पुकारा। इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, संगीत की साधना आराधना कोई आसान बात नहीं। संगीत की देवी उसी पर प्रसन्न है जो रोज कला की तपस्या करता है। शास्त्रीय संगीत जो हर एक गीत की नींव है, इस शास्त्रीय संगीत के नींव के बिना कोई भी गीत पूरा नहीं हो सकता। उस संगीत को प्राप्त करने के लिए सरस्वती देवी की कृपा जिस पर होती है, वही तो एक बड़ा ही अच्छा गायक बन सकता है। तो आज के प्रोग्राम में यीशुदास के सुने कुछ गीत गाएंगे जिन पर सरस्वती देवी का हाथ है, उनको देवी प्रसन्न है। चलिए सुनिए उन्हीं के स्वरों में देवी सरस्वती शारदा की एक प्रार्थना।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो गाया था यशुदास ने फिल्म आलाप के लिए। संगीत के सच्चे उपासक थे गायक यशुदास, जिनके चुनिंदा गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, संगीत की ओर सारा जहां एक उपाय के रूप में, इलाज के रूप में देखता है। हर दर्द की दवा है संगीत, दुखों पर मरहम है संगीत। क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे थे यशुदास, मगर उनके पिता शास्त्रीय संगीत गायक थे। उनके पहले गुरु थे, संगीत की शिक्षा उन्होंने तिरुवनंतपुरम के संगीत विद्यालय से ली। केरला के संत कवि, समाज सेवक नारायण गुरु ने लिखी हुई कविता गाने का मौका उन्हें सबसे पहले मिला, और तभी से उनका गीतों का सुहाना सफर शुरू हुआ। मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों के सबसे पसंदीदा गायक के रूप में वह उभर आए।

0: लहू के दो रंग इस फिल्म से गीत अपने सुना जो लिखा था फारूक कैसर ने, संगीतकार थे बापी लहरी और गाया था येशुदास ने। गान गंधर्वम जिन्हें कहा गया है उनके बारे में, यानी कि गायक येशुदास के बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में और उनका संगीत का सफर भी जान लेंगे। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। हिंदी फिल्मों में गीत गाने का मौका उन्हें 1970 में मिला और हिंदी फिल्मों के सारे ही गीत हिट हो गए।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

दिल पुकारा में अभी आपने वो जो गीत सुना वो था फिल्म चश्मे बद्दूर से, गाया था येशुदास और हेमंती शुक्ला ने, गीतकार थी इंदु जैन और संगीतकार थे राजकमल। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन सारे पुरस्कारों से जिन्हें सम्मानित किया गया है उन्हीं के बारे में बातें करेंगे और मधुर सुहा

गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। इन पुरस्कारों के साथ साथ यशुदास को 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। यशुदास ने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त रूसी, लैटिन, अरबी, इन विदेशी भाषाओं में भी लगभग 1 लाख गीत गाए हैं। उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि 1987 में उन्हें कहना पड़ गया कि अब मुझे कोई अवार्ड न दे। 50,000 से ज़्यादा गीत गाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले थे यशुदास।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने गीत सुना, फिल्म स्वामी से गीतकार थे अमित खन्ना, संगीतकार थे राजेश रोशन, येशुदास, जिनके बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में। 60 साल का लंबा सफर संगीत के क्षेत्र में रहा है उनका, इसलिए भारतीय संगीत के इतिहास में उन्हें सबसे महान गायक माना जाता है। केरला में सांस्कृतिक आदर्श माना जाता है। 2001 में उन्होंने संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं में बने एल्बम अहिंसा के लिए नए युग का संगीत और कर्नाटिक शैली के मिश्रण में गाया। मध्यपुर में अपने संगीत समारोह में उन्होंने कर्नाटिक शैली में अरबी गीत गाए। विदेशों में अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में वह कार्य करते रहे।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म टूटे खिलौने से एक गीत जो लिखा था कैफी आजमी ने, संगीतकार थे बप्पी लहरी। 2009 में येशुदास ने शांति के लिए संगीत इस घोष वाक्य के साथ तिरुवनंतपुरम में आतंकवाद के खिलाफ एक क्रॉस कंट्री संगीत अभियान शुरू किया। ताज हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने शांति संगीत मात्रा के शुभारंभ के अवसर पर येशुदास को मशाल सौंपी। यूनेस्को की तरफ से उन्हें शांति के लिए संगीत इस उपक्रम के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। येशुदास ने मलयालम फिल्मों में काफी सारे गीतों को संगीत भी दिया। एक दिन में 11 अलग अलग भाषाओं में गीत गाने का विक्रम भी उन्होंने प्रस्थापित किया और संगीत के विश्व में अपना एक ऊंचा मकाम प्राप्त किया। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में येशुदास के बारे में बातें की और उनके गाए कुछ सुरीले पुराने नगमे हमने सुने। दोस्तों, संगीत ही ऐसा माध्यम है जो विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। मानव और क्या चाहता है, एक सुख और शांति से भरा जीवन जो मिलता है संगीत के माध्यम से। दोस्तों, आजकल विश्व में जो लड़ाई के बारे में हम सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो बड़ी बुरी बात है, मगर संगीत के माध्यम से जो आनंद मिलता है वो कुछ और है। वो सारे दुखों को हरा देता है, दुखों को दूर करता है। तो ऐसा ही मीठा सुरीला संगीत सुनते रहेंगे, ये सुनाते रहेंगे।

पुकारा। इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, संगीत की साधना आराधना कोई आसान बात नहीं। संगीत की देवी उसी पर प्रसन्न है जो रोज कला की तपस्या करता है। शास्त्रीय संगीत जो हर एक गीत की नींव है, इस शास्त्रीय संगीत के नींव के बिना कोई भी गीत पूरा नहीं हो सकता। उस संगीत को प्राप्त करने के लिए सरस्वती देवी की कृपा जिस पर होती है, वही तो एक बड़ा ही अच्छा गायक बन सकता है। तो आज के प्रोग्राम में यीशुदास के सुने कुछ गीत गाएंगे जिन पर सरस्वती देवी का हाथ है, उनको देवी प्रसन्न है। चलिए सुनिए उन्हीं के स्वरों में देवी सरस्वती शारदा की एक प्रार्थना।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो गाया था यशुदास ने, फिल्म आलाप के लिए संगीत के सच्चे उपासक थे गायक यशुदास, जिनके चुनिंदा गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, संगीत की ओर सारा जहां एक उपाय के रूप में, इलाज के रूप में देखता है। हर दर्द की दवा है संगीत, दुखों पर मरहम है संगीत। क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे थे यशुदास, मगर उनके पिता शास्त्रीय संगीत गायक थे। उनके पहले गुरु थे, संगीत की शिक्षा उन्होंने तिरुवनंतपुरम के संगीत विद्यालय से ली। केरला के संत कवि, समाज सेवक नारायण गुरु ने लिखी हुई कविता गाने का मौका उन्हें सबसे पहले मिला, और तभी से उनका गीतों का सुहाना सफर शुरू हुआ। मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों के सबसे पसंदीदा गायक के रूप में वह उभर आए।

0: लहू के दो रंग इस फिल्म से गीत अपने सुना जो लिखा था फारूक कैसर ने, संगीतकार थे बाप्पी लहरी और गाया था यशुदास ने। गान गंधर्वम जिन्हें कहा गया है उनके बारे में यानी कि गायक यशुदास के बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में और उनका संगीत का सफर भी जान लेंगे। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। हिंदी फिल्मों में गीत गाने का मौका उन्हें 1970 में मिला और हिंदी फिल्मों के सारे ही गीत हिट हो गए।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

दिल पुकारा में अभी आपने वो जो गीत सुना वो था फिल्म चश्मे बदूर से, गाया था यशुदास और हेमंती शुक्ला ने, गीतकार थी इंदु जैन और संगीतकार थे राजकमल। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन सारे पुरस्कारों से जिन्हें सम्मानित किया गया है उन्हीं के बारे में बातें करेंगे और मधुर सुहाने गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। इन पुरस्कारों के साथ साथ यशुदास को 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। यशुदास ने भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त रूसी, लैटिन, अरबी इन विदेशी भाषाओं में भी लगभग 1 लाख गीत गाए हैं। उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि 1987 में उन्हें कहना पड़ गया कि अब मुझे कोई अवार्ड न दे। 50,000 से ज्यादा गीत गाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले थे यशुदास।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने गीत सुना, फिल्म स्वामी से गीतकार थे अमित खन्ना, संगीतकार थे राजेश रोशन, येशुदास, जिनके बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में। 60 साल का लंबा सफर संगीत के क्षेत्र में रहा है उनका, इसलिए भारतीय संगीत के इतिहास में उन्हें सबसे महान गायक माना जाता है। केरला में सांस्कृतिक आदर्श माना जाता है। 2001 में उन्होंने संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में बने एल्बम अहिंसा के लिए नए युग का संगीत और कर्नाटक शैली के मिश्रण में गाया। मध्यपुर में अपने संगीत समारोह में उन्होंने कर्नाटक शैली में अरबी गीत गाए। विदेशों में अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में वह कार्य करते रहे।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म टूटे खिलौने से एक गीत जो लिखा था कैफी आजमी ने, संगीतकार थे बप्पी लहरी। 2009 में येशुदास ने शांति के लिए संगीत इस घोष वाक्य के साथ तिरुवनंतपुरम में आतंकवाद के खिलाफ एक क्रॉस कंट्री संगीत अभियान शुरू किया। ताज हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे ने शांति संगीत मात्रा के शुभारंभ के अवसर पर येशुदास को मशाल सौंपी। यूनेस्को की तरफ से उन्हें शांति के लिए संगीत इस उपक्रम के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। येशुदास ने मलयालम फिल्मों में काफी सारे गीतों को संगीत भी दिया। एक दिन में 11 अलग अलग भाषाओं में गीत गाने का विक्रम भी उन्होंने प्रस्थापित किया और संगीत के विश्व में अपना एक ऊंचा मकाम प्राप्त किया। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में येशुदास के बारे में बातें की और उनके गाए कुछ सुरीले पुराने नगमे हमने सुने। दोस्तों, संगीत ही ऐसा माध्यम है जो विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। मानव और क्या चाहता है, एक सुख और शांति से भरा जीवन जो मिलता है संगीत के माध्यम से। दोस्तों, आजकल विश्व में जो लड़ाई के बारे में हम सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो बड़ी बुरी बात है, मगर संगीत के माध्यम से जो आनंद मिलता है वो कुछ और है। वो सारे दुखों को हरा देता है, दुखों को दूर करता है। तो ऐसा ही मीठा सुरीला संगीत सुनते रहेंगे, ये सुनाते रहेंगे।

0: सर्जन?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।